0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कह दो, क्या तुम खुदा को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है।

तूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही खुदा है।

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365.

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
2: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
4: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
5: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. 365.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शराइत जवाबत लागू है।
7: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम कराची की तकनीर।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
11: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जाज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जाज 5G।
12: 11.9% 11.9%
13: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99% HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
15: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शराइत ज़वाबत लागू है।
16: सब मुड़ के देख रहे हैं।
17: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू हुंडई पैलेसेड हाइब्रिड, ग्रैंड, bold and hard to miss.
18: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
18: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
17: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
18: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
17: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
9: एंड स्वागत खानम कराची की तकनीक.
7: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
19: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
7: एंड
20: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
7: एंड
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
21: FM 100
0: 31 साल. FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
21: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
4: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
7: शराइत ज़वाबत लागू है.
8: 100 FM
9: 11.9% 11.9%
10: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
9: 11.99%.
12: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
13: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
12: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
13: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option.
12: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
13: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab wahan HBL.
14: And Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
15: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
16: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
15: एंड
17: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
15: एंड
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
18: FM 247365.

0: का भरोसा।
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
2: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
6: शराइत ज़वाबित लागू है।
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
8: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
8: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम कराची की तकदीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
14: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोसा ऐप से। जैज 5G।
15: 11.9% 11.9%
16: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
17: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
18: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। शराइत और ज़वाबित लागू है।
15: 11.99%।
19: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
15: एंड शौकत खानम कराची की तकदीर
1: एंड सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
20: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
1: एंड
21: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
1: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
22: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365
23: FM100 traffic update.
24: के साथ मैं हूं फरूख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ

0: लगता है एफ 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक सपूरा चौरंगी से वो ट्रैफिक जो एयरपोर्ट के अंदरूनी रास्तों के जिना एवेन्यू मॉडल कॉलोनी और बनीर की जानब आ रहा है उसके दरमियानी रास्ते पर तामीरी काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। वो तमाम लोग जिस रास्ते से सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए। इसके साथ साथ हबीब बैंक चौरंगी से वो ट्रैफिक जो इस वक्त शेरशाह और माड़ीपुर रोड की जानब जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, लिहाजा मुतबादल रास्ते को इख्तियार करते हुए अपनी मंजिलों की जानब सफर करें। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
1: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
6: 100 FM.
7: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
9: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
8: HBL जरिए बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
11: शराइत जवाबत लागू है.
6: 100 FM.
12: 11.99%.
13: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है.
15: शराइत और ज़वाबित लागू है.
12: 11.99%.
16: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
17: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
16: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
16: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
17: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option.
16: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
17: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab wahan HBL.
4: And Shaukat Khanum Karachi ki takleef.
5: And
8: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
5: And
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: And
18: Tabal family mixture line, umrah par jaye.
5: And
14: purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
19: Pakistan humse hai. हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा. तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे. क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान. अज़्म इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान.
20: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
21: FM247365.
22: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
23: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
22: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
23: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ. ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
22: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم ہوگی.
3: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
23: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
3: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
22: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
23: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
22: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
20: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
4: 11.99% 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
4: 11.99%.
8: सब मुड़ के देख रहे हैं.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है. और space भी काफी है.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option.
10: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
9: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
11: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ.
12: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा.
13: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
14: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
7: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: facebook.com/fm247365
15: FM 247 365.

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही

0: साथ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैंस 5G।
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
5: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
6: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत, और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
10: शराइत ज़वाबित लागू है।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
14: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111-118-2725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
14: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
12: एंड शौकत खानम, कराची की तकदीर
13: एंड
7: सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
13: एंड
17: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
13: एंड
7: कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
4: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
14: Us on facebook.com/fm247365
18: FM 247 365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
0: This program is brought to you by
6: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
1: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
1: facebook.com/fm247365
3: FM 247 365

0: 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: 100 FM.
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account.
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
5: 11.99%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
5: 11.99%.
0: This program is brought to you by
9: VR Telehealth. पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
10: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
12: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है जब बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के
13: آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
14: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
15: FM 24/7/365

0: AM. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत
2: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर तीन महीने के बाद यह आसान टीका लो ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है
3: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर तीन महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
4: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना
0: This program is brought to you by
4: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: This program is brought to you by
3: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
1: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 03202758492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: FM 100 like us on facebook.com/fm247365 FM 247365.
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM.

0: Your location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
1: This program is brought to you by
4: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
5: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुताबिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफातशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो. अगर आपकी सिम किसी वफातशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं. शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है. पीटीए आपके शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
0: This program was brought to you by
2: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
4: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूमात के लिए विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप विया के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।

0: 24-7-365. FM 24-7-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: This is your

0: में हमारी एक पोएम थी, पोएम नहीं थी मतलब एक नज़म थी यार अब ना, तो वो मुझे याद नहीं, और मेरी टीचर ने मुझे डांटा और मतलब इतना ज्यादा डांटा कि मैं इतना डर गई, और आज तक मुझे वो पूरी रटी हुई है।
1: और मुझे वो क्लास 9 की वो सिंधी वाली एक पोएम है, हारी प्यारा वाला,
0: हाँ,
1: वो मुझे अभी तक याद है वाली।
0: अच्छा, ये होता है, याद रहता है। अच्छा मुझे तो याद है कि हालांकि मैंने थोड़ी सी गलती करी थी पढ़ने में, मैं क्लास 1 में थी या नर्स, आई थिंक 1 में थी जी, तो वो टीचर के डर की वजह से ना मुझे वो पक्की पक्की याद हो गई। और रदा आपको किसी डर की वजह से याद हुई थी या बस याद रही?
1: डर पेपर ही थे, डर की वजह से याद नहीं थी। 9 का तो सिंधी आती नहीं थी, वो सिंधी की थी पोएम, हारी प्यारा जवान सिंघारा, इस तरह
0: की। बिल्कुल,
1: तो वो फिर वो डर के मारे याद हो गई, जो अभी भी काफी जो उसके मिसरे शायरी अभी तक वो जहन में हमारे।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कभी कभी कुछ चीजें हमें डर की बिना पर ना सारी जिंदगी याद रहती हैं, और वो हम कभी नहीं भुला पाते। और वैसे भी होता है ना, बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं, मैं तो बहुत ही जल्दी घबरा जाती हूँ, मेरा तो बड़ा मसला है। आप भी ऐसे?
1: बिल्कुल, मेरे साथ भी, मैं तो खुद एकदम परेशान हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आती।
0: मैं तो पहले ही इतनी परेशान हो जाती हूँ, अब तो हमारे ऑफिस वाले भी समझ गए हैं, अब चाहे अली भाई महफूज भाई मुझे पहले ही देख के कह रहे थे तुम बस थोड़ा सा, क्योंकि होता है किसी किसी का। अच्छा, देखिए ये फेयर ना हमें बहुत अच्छी खासी चीज आती हुई भी खराब हो जाती है, इसमें ये होता है। तो इस वजह से हमने बहुत सारी चीजें डर की वजह से पक्की पक्की याद करके रखी हुई हैं, और आप भी अपना कोई ऐसा तजर्बा हमसे शेयर कर सकते हैं मजे का। ऑलराइट जी, और ये तो आज वैसे आप बनाने क्या वाली हैं वहां जाकर भी?
1: वहां मेरे पास एक वो है, इसके बन है, पिज्जा बन है, और साथ में विंग्स है, और उसके साथ एक राइस है।
0: बहुत ही सारी चीजें इतने कम टाइम में।
1: हाँ, बस कम टाइम में, उसमें मैं इतनी लंबी लंबी बातें करनी पड़ती है। अच्छा, मेरी जो कुकिंग है ना बहुत फास्ट है, मैं बहुत जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ। जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि घर में फटाफट एक साइड पे रोटी बनाई, एक साइड पे चिकन का सालन बनाया, और पूरा घर नीट एंड क्लीन करके थोड़े से कपड़े भी मैंने धो लिए, वैसे तो हमारी धोनी में जाते हैं वो भी मैंने धो लिए। तो मैं काम ना बड़े करना है तो बड़ी जल्दी करती थी, इसलिए कि देखिये जब इंसान सोचता है ना कि काम मुझे ही करना है, तो उससे बेहतर है कि आप फटाफट करके आप फारिग हो गए। और इसी तरह मैं जब घर में जाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपने काम खत्म करती हूँ, फिर मोबाइल को हाथ लगाती हूँ। मोबाइल को लेके बैठ जाओ तो फिर आपके काम ही नहीं खत्म होते, काम रह जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले फिर मैं मोबाइल को पकड़ती हूँ, फिर मैं देखती हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है।
0: बिल्कुल, तो
1: बस स्पीड पकड़ लेती हूँ काम की, फटाफट कर।
0: मोबाइल यानी कि आप सबसे लास्ट में उसे वेलकम करती हैं, पहले सारे कामों को,
1: पहले काम। असल में जब आप मोबाइल को खोलते हैं उसमें आपको इतनी चीजें नजर आती है, फिर आप उसको देखते जाते हैं देखते जाते, टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता।
0: बिल्कुल सही बात।
1: तो अगर आप अपने काम सारे पहले फटाफट खत्म करें, फिर आराम से बैठ के मोबाइल को देखते रहे, कोई भी टीवी देख रहे हैं, जो भी आप काम करें वो करें। मेरी बहनें अक्सर कहती थी पता नहीं ये जिन है क्या चीज है, यकीन करें मैं सुबह से निकली होती थी, घर पे आती फौरन फटाफट कामों में लग जाती थी। वो कहते थे लोग आके आराम कर दें ये कामों में लग जाती है, तो मैं फटाफट अपने जो काम होते हैं वो फटाफट करना शुरू कर देती हूँ।
0: लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे भी ये होता है कि कोई काम, कोई भी काम है ना, वो बस जल्दी से कर दो, उसे टालो नहीं, क्योंकि वो एक टेंशन रहती है। अगर आपको कोई काम आपके पास है ना और आप वो कह रहे हैं अभी कर लेंगे, मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं लोगों को देखती भी हूँ कि कोई भी काम में रहता है वो इतने रिलैक्स रहते हैं, हाँ अभी कर लेंगे, हाँ अभी कर लेंगे। मैं कहती कैसे यार, जितनी जल्दी हो सके मैं कहती हूँ काम कर लो, उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है ना वो बोनस टाइम है आपके पास। तो इसलिए अपने कामों को एज सून एज पॉसिबल करें।
1: मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ, देखिए कल पे कोई काम ना छोड़े। मेरी आदत है, मेरे अगर जहन में कोई चीज आ गई है तो मैंने उसको अभी करना है और अभी को उसको खत्म करना है, किसी को कॉल करनी है, जो भी काम हो मैं कहती हूँ कल पे ना छोड़े, कल नहीं आता, कल आता ही नहीं है, बस आप अपने काम उसी टाइम पे कर लो तो वही ज्यादा बेहतर है। तो मैं समझती हूँ कि इसी में आपकी कामयाबी भी है कि आप टाइम को वेस्ट ना करें, आप अपना काम कोई कल पे ना छोड़ें, सुस्ती ना करें, जब ही वो बंदा कामयाब होता है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छी बात रदा ने कही है कि अपना काम कल पर ना डालें, जो करना है वो आज कर डालें, क्योंकि वक्त का आजकल बिल्कुल नहीं पता चलता। आज आप ये देखे रदा कि आज 11 सितंबर हो गई है, हमें इस महीने में दाखिल हुए हुए 11 रोज हो चुके
1: हैं। देखिए इतनी तेजी से, अभी मैं जब मैं आई थी तो मैं कहती फातिमा पिछले उसमें कहती मैंने कितनी तेजी से वक्त गुजरा।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, और आप ये सोचें कि अब ऐसा लग रहा है कि भाई 11 दिन हो चुके हैं, 11 दिन बहुत मायने रखते हैं। और हम क्या सिर्फ 11 दिन की बात करें, आप ये देखें कि साल ही कितनी तेजी से जो है वो गुजर रहा है। हम जो है वो 9वें महीने में दाखिल हो चुके हैं, सिर्फ 3 महीने रह गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड आई होप एंड आई विश कि ये महीने भी हम सबके बहुत अच्छे से गुजरे और अच्छे अच्छे टाइम हमारा इस महीने में गुजरे। खैर जी, इसी के साथ साथ लेते हैं हम एक अदद ब्रेक, क्योंकि ब्रेक है जरूरी लाइफ में, तो ब्रेक शामिल करते हैं और आते हैं वापस, फिर आपकी रेसिपीज को करेंगे शामिल। तो आपने कहीं नहीं जाना है, वी विल बी राइट बैक।
2: It's 12:45 p.m. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज।
3: फीनिक्स लगा और भूल जा, फीनिक्स लगा और भूल जा।
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
5: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: 100 FM।
7: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: पाकिस्तान में बढ़ते फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आप آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 24/7/365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Assalamualaikum Pakistan. अभी आप सुनेंगे मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज़े जुमा।
3: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
5: It's 24 hours, non-stop vibration, connecting you, holding you, with FM 100.
6: FM 100. FM 100.

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 08001155 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
7: वो खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL जरिए बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
10: शराइत ज़वाबत लागू है।
11: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
12: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
13: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 03202758492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
6: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
7: वो खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL जरिए बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
10: शराइत ज़वाबत लागू है।
14: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
15: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
14: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
15: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
14: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
15: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
14: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
15: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
2: And सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा।
16: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: And VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
2: And
17: तबाल फैमिली रिक्शा लाएं, उमराह पर जाएं।
18: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
19: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
20: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
21: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
22: This is your music.

0: Your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: 11.9%, 11.9%.
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%।
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: सब मुड़ के देख रहे हैं।
7: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
8: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
7: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
8: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
7: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
9: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
10: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
11: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
10: HBL जरिए बैंक की वजह से?
11: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
12: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और शो के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूम के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
13: शराय तो जवाबत लागू है।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा।
15: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
16: And via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
17: And डबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
18: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
19: FM 247365

0: 11.9% 11.99%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी ईयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
1: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं.
2: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
2: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
4: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
6: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
8: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
10: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
11: शराइत ज़वाबित लागू है.
12: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
13: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
14: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं.
15: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
16: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
15: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना.
16: इन्वेस्ट पार्क?
17: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
16: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
18: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा.
19: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
14: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
20: एंड
21: तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
20: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9 PM 11.9 PM.
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%।

0: 11.9%, 11.99%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
9: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
10: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
11: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
10: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
11: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
10: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
12: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
13: शराइत और ज़वाबित लागू है।
14: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
17: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। वी मेक लर्निंग फन फ्रॉम प्राइमरी इयर्स एजुकेशन थ्रू स्टीम अप्रोच, ताकि आपका बच्चा डेवलप कर सके स्ट्रॉन्ग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
18: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीतता जा।
19: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
20: एंड वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: एंड कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
21: Like us on facebook.com/FM247365 FM247.
13: 365 FM 100
21: 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
13: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 11.99%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एंड सर सब नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा।
8: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
10: एंड तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
11: FM 24/7 365
12: 100
13: Evening Drive Time with DJ Grisella.

0: 12.9%, 11.9%।
1: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
2: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: 11.99%।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: 100 FM।
6: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
8: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
8: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
9: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत, और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
10: शराइत और ज़वाबित लागू है।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
14: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
15: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
17: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
18: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
19: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
18: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
19: इन्वेस्ट पार्क?
17: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
19: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। We make learning fun from primary years education through STEAM approach, ताकि आपका बच्चा develop कर सके strong science, technology, engineering, art and mathematics skills. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: This program is brought to you by HBL Freedom Account, जहां ख्वाब
5: वहाँ HBL
10: एंड सर सब्स नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा
20: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
21: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
22: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
23: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL.
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती.
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122. आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
4: एंड सर सब्स नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा.
5: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
6: एंड वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
7: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं.
8: 11.9% 11.9%
9: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
10: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है.
11: शराइतों से वाबित लागू है.
8: 11.99%
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहाँ HBL.
13: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
14: शौकत खानम कराची की तकदीर.
15: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
16: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
17: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
18: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
19: ओ खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
20: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
19: HBL जरिए बैंक की वजह से?
20: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
19: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
21: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
22: शरायत जवाबित लागू है.
23: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
2: تبال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تبال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
3: This program is brought to you by
21: HPL Zari Banking کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
10: اینڈ پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو, قریبی HPL برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن.
3: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
11: FM 247365.
22: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: सच्ची कभी बताकर नहीं आती।
1: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
2: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम कराची की तकनीक।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: 100 FM।
12: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
13: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
14: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
13: HBL जरिए बैंक की वजह से?
14: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
13: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
15: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
16: शराय तो जवाबत लागू है।
17: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
18: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
19: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
20: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
21: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
5: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
11: نشہ نہ
16: پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
22: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
23: FM 100 100.

0: radio station. Family radio station. Non-stop music. Music of your choice. 100 FM. 100 FM.
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: 11.9% 11.9%.
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
7: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: 100 FM।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाए। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
4: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPSI ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
5: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
3: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
2: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
2: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
3: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
0: This program is brought to you by
4: HPSI Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
5: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Raat mein gaadi chalane ke dauran tez roshni dene ka matlab aisa hi hai jaise din ke waqt horn bajana. Iska gair zaruri istemal mat kijiye. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 9 PM. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
3: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
4: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
5: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
7: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
10: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
11: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: FM247365 Let's celebrate
15: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey. Back to back.

हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज शरीफ, कैसी तबीयत? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, फिट फाट होंगे, दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। जनाब मैसेज आप लोग करते हैं के एच आई पे, इस टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर। जो दिल करे, जो दिल की बात हो आप उसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा जनाब आज है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन जरा पॉप जो है पुराने वक्तों के 90s के 20 अर्ली 20 2000 वाले वो गाने मैं आपको सुनाता हूँ। और आज भी क्यू शीट बनी हुई है और कोशिश यही है कि सारे हिट गाने मैं रख दूं और कुछ ऐसे गाने भी रखूं जो इतने हिट नहीं हुए लेकिन थे बहुत ही जबरदस्त। तो आगाज करते हैं हदीका ज्ञानी की खूबसूरत आवाज से और वो है कैसे

0: जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ आज जो है प्यार से मोहब्बत से मैसेज करते हैं। अच्छा, थोड़ी से जरा आज जब मैं यहाँ आता हूँ जरा टेम्पो स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे आपके मैसेजेस शामिल होते हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, क्या क्या। अच्छा भाई, सबसे पहले पीर एम इलियास जौहर से मैसेज कर रहे हैं। आज भाई वेलकम और वेरी ब्यूटीफुल शो आई होप। और इसके अलावा तसव्वुर खानम का सरकार मंडे वाले दिन तसव्वुर खानम को भी शामिल करेंगे। आज जरा पॉप गाने हैं 90s वगैरह के, एंजॉय करो। मेरी इलियास भाई जरा नए इस तरह के भी सुना करोगा, एक ही वैरायटी चल रही थी तुम्हारे मेहंदी हसन या तसव्वुर खानम, ये भी सुनो, इनको भी सुनो यार, दुनिया में और लोग भी हैं। अच्छा भाई, जरी नूर के मैसेज आ गए, सलाम कैसे हैं सबको, सलाम, वालेकुम सलाम जरी नूर। अच्छा भाई, संजीदा आ गई हैं, संजीदा जी क्या हाल है आपके, और आज मैं भी बहुत संजीदा, आज बिल्कुल संजीदगी से प्रोग्राम करना है। अच्छा भाई, शहजादे खुश आमदीद, बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। और पूछ रही है कि शहजादे एक बात बताइए, आपको हम सब लिसनर्स की याद नहीं आती, क्यों नहीं आती सरकार, क्यों नहीं याद आती। और आगे नीचे लगा, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आती आपकी। अच्छा जी, कोई बात नहीं यार, अच्छा है ना, इंसान मसरूफ रहे तो फिर याद नहीं आती। आदि का ज्ञानी का गाना पसंद आ गया। अच्छा जनाब, बड़ी मेहरबानी, पता नहीं क्या क्या संजीदा जी आप भी लिख देती हैं। और मिसेस फारूक कैसी हैं आप, वालेकुम सलाम, इतनी सारी दुआएं देने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, गयासुद्दीन बलबन आ गए हैं मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम, आपकी पूरी टीम को और सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम, बस हंसती मुस्कुराती रहे संजीदा जी। अच्छा जी, टाइम हो गया है 2 मिनट की ब्रेक, तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम, कराची की तकदीर।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और एफएम 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है, वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फॉर्म, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए, हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Us on facebook.com/FM247365.
5: एक्टिव यमी
6: एडोरेबल जबरदस्त
5: ये प्यार तो सुनो यार।

then I will come back to Red FM. 100 और सुना रहा हूँ आपको मैं 90s के भी गाने हैं. तो 90s का जिक्र करें तो स्ट्रिंग्स जो है ये बैंड भी हमें याद आ जाता है. बहुत सारे बैंड वैसे तो याद आते हैं लेकिन अभी जरा मैं जिक्र करूंगा स्ट्रिंग्स का. स्पेशली ये गाना तो बहुत ही हिट हो गया था उनका.

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: सब मुड़ के देख रहे हैं।
3: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
3: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
4: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
3: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
4: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
3: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
5: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Active.
8: Yummy.
7: Adorable. Zabardast. Say I've got a crush on you.
8: Kya pyaas to suno yaar.

मैंने जनाब वेलकम बैक। और पीर एम इलियास कह रहे हैं अयाज भाई थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जनाब इलियास भाई, खुश हैं आप। अब रिक्वेस्ट नहीं करनी, देखें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब जो है ना वो रिक्वेस्ट नहीं करनी। अच्छा जनाब, और संजीदा फिर मैसेज कर रही है, मैसेज जबरदस्त आते हैं इस पर आपके बेसाख्ता जवाब। अरे मैं क्या बोलूं, ऐसी मुंह से निकल जाती है, हालांकि मैं बड़ी कोशिश करता हूं आज मैं डिसेंट रहूं, लेकिन सीरियसली जब मैं सोचता हूं इतना मैं डिसेंट प्रोग्राम करूंगा उसी दिन जो है ना मैं चिचौरा हुआ होता हूं फुल टाइम। नहीं लेकिन आगे जो मैं कंट्रोल करूंगा, चाय भी साथ साथ पी रहा है, अगर आप भी कॉफी वॉफी पी रहे हो भाई जो ड्राइव कर रहे हो तो इत्मीनान से तवज्जो सामने रखो यार, तुम कहीं बोतलों का चाय का ना सोच लो, सामने रोड पे नजर रखनी है भाई। अच्छा बास दोस्त ऐसे मेरे वो बात करते करते पूरे पीछे मुड़ जाते हैं, अबे मैं कहा मुंह आगे कर भाई, आगे मुंह करो यार, रोड पे देखो तुम पूरे पीछे मुंह। ऐसे ड्राइवरों से मेरी बहुत मेरी जान जाती, मैं कहता हूँ यार तुम एक काम कर मैं पैदल चला जाता हूँ, किससे सुनाएंगे और मुंह के रिएक्शन देखने के लिए पूरा मुंह पीछे, या गाड़ी चला ले या रिएक्शन देख ले, पता नहीं ऐसे क्यों है। अच्छा जनाब हुमा सिद्दीकी आ गई, हुमा जी कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कह रही आप आ गए मुझे पता नहीं चला, बस मुझे खुद भी नहीं पता चलता सच्ची बात है। और इंग्लिश सॉन्ग की बात करेंगे भाई, भाई आज मेरा एक बड़ा मैंने अपनी पसंद का ट्रैक जो है ना वो रखा है, ब्रायन एडम्स, वैसे मुझे उनके एक दो गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, एवरीथिंग आई डू डू इट फॉर यू, क्या गाना था यार ये भी, रॉबिनहुड भी बहुत सारी बन गई है। केविन कॉस्टनर की अगर रॉबिनहुड आप मूवी देखें उसमें ये जो है सॉन्ग आपको मिल जाएगा, क्या बात है क्या बात है। तो हुमा जी आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ।

वेलकम जी, वेलकम आयशा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सबको सलाम दुआ भेज दी उन्होंने, तमाम सुनने वालों को सलाम, बहुत सारी दुआएं भी। और हाय हाय हाय हाय, इतने प्यार से कह रही है आयाज, मिस करती हूँ। इस टाइम आप नहीं आते तो कमी सी महसूस होती है, मैं कितने जाऊँ, मैं कितने जाऊँ। आयशा जी बहुत शुक्रिया, सीरियसली मुझे भी कमी महसूस होती है जब मैं इस टाइम पे नहीं होता, बस मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ। बताऊंगा मैं आपको, थोड़े दिनों में आपको बताने वाला हूँ, एक अच्छा सा एक सिलसिला शुरू होने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल। अच्छा जनाब, और संजीदा क्या कह रही है? कह रही भाई आप सीरियस हो नहीं सकते, हम होने नहीं देंगे संजीदा। अच्छा जी बिल्कुल ठीक हो, ऐसे ही है वैसे। अच्छा जनाब, इसके अलावा इरफान भाई को बस एक ही होता है कि मैं किसी तरह फेसबुक पे आ लूं। सरकार क्या फेसबुक, एक आध दिन बाद इंशाल्लाह। अच्छा जनाब 9:40, इतनी जल्दी यार, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है यहाँ पे। अच्छा जी नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और शामिल करते हैं नजम शेराज को। ये भी 90s में हिट थे, बल्कि सुपर हिट थे, स्पेशली इनका ये ट्रैक।

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Sagar Panam Karachi ki takleef.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें.

0: पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट के एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275# हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004# हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342# हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
3: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिर 100 और साथ ही साथ मैसेजेस। कोई भी सॉन्ग संजू के नाम कर दे, जरी नूर के भी मैसेज आते हैं। इसके अलावा इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम की तारीफें हैं, सबको सलाम दुआ कह दिए। इसके अलावा आपसे बात करने में मजा आता है, वैसे इतने संजीदा क्यों हो रहे हैं? संजीदा है ना आप संजीदा है तो इसलिए मैं भी। बात कुछ थोड़ी सी मौसम की हुई, जब भी मौसम थोड़ा चेंज होने लगता ना तो फीवर वाली फीलिंग आ जाती है, तो बैरल जनाब तो इसलिए मैं जरा आराम से सुकून से करूं, ज्यादा एनर्जी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूं, लेकिन वैसे ही शो वैसे ही हो जाता है। भाई मौसम की बात कर दी है, मौसम एक गाना भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन उससे पहले हुमा सिद्दीकी ब्यूटीफुल सॉन्ग एवरीथिंग फॉर यू FM 100 के टॉम क्रूज। अरे नहीं करे सरकार, टॉम क्रूज क्या बात है, प्यार मोहब्बत है आप। अच्छा जनाब गाना याद आ गया मुझे, और वो है मौसम।

ऑलराइट जी। अच्छा जनाब चाची आ गई हैं। चाची क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगी आप। और अच्छी बात है, कहने में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हकीकत है भाई हकीकत। यही बातें तो मैं मिस कर रहा था आपकी। अच्छा जनाब और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया, गाने वाने इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। और इसके अलावा कहने में नजर उतरवा लें और काम की भी थकन, काम की थकन आपने वैसे सही कहा, काम का है चक्कर। इसके अलावा गाना भी पसंद आ गया ये वाला। और कह रही वैसे इतनी छुट्टियां हो जाती हैं, बस छुट्टियां, बस मजा आता छुट्टियों में। अच्छा जनाब एक और खूबसूरत ट्रैक, और ये जुनून के भाई आज मैंने दो गाने रखे, दो ट्रैक जुनून के हमारे पास मौजूद हैं। पहले मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेक का टाइम, और उसके बाद जब वापस आएंगे दूसरा ट्रैक मैंने आपको सुनाना है। क्या बात है इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई हमारे बस बहुत प्यारे से खिदमत करते रहते हैं, गर्मा गर्म चाय लेके आ जाते हैं। जनाब तो ये एक और खूबसूरत सा ट्रैक

में जनाब सुन रहे FM 100 आयाज अहमद के साथ। आज ये गाना भी अच्छा था 80s के, 80s का। वैसे यार आजकल वो ट्रेंड चल पड़ा है तस्वीरों का, लोग जो हैं 80s के उस जमाने को एंजॉय कर रहे हैं अपनी पिक्चर्स के थ्रू। अच्छा भैया, अच्छा जनाब गाना ये बड़ा अच्छा था, टॉक टू द लॉयर। कहने इसके अलावा जनाब आप बहुत किस्मत वाले हैं, इतना प्यार मिलता है आपको लोगों को तो बस पैसे के पीछे। पैसे भी ठीक है लेकिन ये आपकी बात बजा फरमाया हुमा जी आपने, इतना प्यार इतनी मोहब्बत FM 100 पर। अच्छा जनाब संजीदा जी क्या कह रही हैं, जिनून का ट्रैक इनको पसंद आ गया और कह रही कि शिट का अच्छा सा गाना मुझे डेडिकेट, मैं डन हो गया, नेक्स्ट गाना मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। जुनून का ही गाना मैं प्ले करता हूँ। यार ये गाना वैसे कम प्ले होता है लेकिन क्या बात है इस ट्रैक की, और ये थोड़ा सा जरा सीरियस गाना लेकिन क्या बात है इस ट्रैक की।

0: to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक. क्या गाना था यार, जबरदस्त. अच्छा जनाब, चाची मेरी इतने प्यार से मुझे मैसेजेस कर रही है, कह रही है ईमानदार इंसान हमेशा लफ्जों की जंग में हार जाता है. क्या खूबसूरत बात कर दी चाची आपने, वाह वाह वाह. अच्छा जनाब, एक याज भाई एक सॉन्ग है नीले नीले अंबर. अब ये तो किशोर कुमार का. सलीम भाई क्या हो गया, सलीम भाई कोई मतलब कुछ समझदार आदमी हो. अच्छा मिले नीले नीले अंबर पे लगा दो. इंडियन गाने नहीं लगाते, पाकिस्तानी ट्रैक्स हैं वो बोलो, वो हम लगा रहे हैं. और बोलने की जरूरत क्या है भाई, क्यू शीट बनी हुई है ना. ठीक है शाबाश सलीम भाई, प्यारा मेरे बेटा. अच्छा जनाब, और संजीदा जी को गाना पसंद आ गया, अली अजमत की आवाज के क्या कहने क्या कहने. और कह रही है कि भाई 80s का दौर जो था शानदार था, फिल्में ड्रामे. हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ. जब पूरी डिटेल लिख दी, पूरी कैफियत बयान कर दी संजीदा, मत करो इतनी डूब गई हो गाने मुझे लग रहा है. वापस आ जाओ, वापस आ जाओ. अच्छा जनाब, इतने संजीदा और इतने सीरियस और इतने गाने सुनाने के बाद मुझे वाटिल सान का ये गाना याद आ गया है. एंजॉय करें और मैसेजेस करें 3636 पर.

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: This program is brought to you by
3: Shogat Khanam, Karachi Ki Takleef.
2: And
4: HPSL Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Sarayalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
5: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
7: Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaas to suno yaar.

हेलो जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं। सलीम मेमन भाई का मैसेज मैंने आधा पढ़ा था, कह रहे भाई नीले नीले अंबर पर जो है वो आलमगीर साहब ने भी गाया। अच्छा यार, मैंने सलीम भाई बताया ना आपको इंडियन गाने, तो इसलिए वो हम प्ले नहीं करते। इंग्लिश ट्रैक्स हो और किसी जबान के भी वो हम प्ले कर सकते। अच्छा जी, आगे उन्होंने लिख दिया सरकार हमसे गलती होगी। कोई बात नहीं ठाकुर, कोई बात नहीं सलीम भाई, कुछ रहे हम। अच्छा भाई, यूके से नादिया मलिक भी आ गई और खाने भी बना रही हैं और यूके में नेट के थ्रू जो है वो एफएम 100 सुन रही हैं। क्या कहने, लोग जानी हर जगह सुन रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी होती। और मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त तो ड्राइव भी कर रहे हैं और एफएम 100 भी इंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर वाजिद कैसे हो, ठीक हो, मजे में हो? डॉक्टर साहब के पास हर चीज का मसले का हल है, हर मसले का हल इनके पास मौजूद है। मेरे ख्याल से बचपन से ना डॉक्टर साहब ने आपके मसाइल और इनका हल, वो आता ना अखबारों में, जन्म में आता था, बहुत शौक से पढ़ा है ना। अच्छा वैसे मैंने देखा है जो इस तरह के डॉक्टर होते ना, हर चीज समझ नहीं भी आती तो ऐसा जवाब देते हैं, बंदा कहता है हाँ ठीक होगा, मुतमइन कर देते हैं फुल टाइम। लेकिन मेरा भाई खुश है आज, बस मैं चाहता हूं ये हर वक्त खुश रहे। और अच्छा सा एक ट्रैक मैं अभी आपको जानता वो डेडिकेट करने वाला। अच्छा जनाब, इसके अलावा संजीदा कह रही है कि सांवली लोगों का क्या होगा, मैं किथे जावा? आपने काम करना है, अगर आप सांवली हैं तो फौरन आपने मार्केट जाना है, फेयर एंड लवली टिका के आपने लगानी है फेस, कुछ ना कुछ असर जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। जनाब एक अच्छा सा ट्रैक जो है वो मैंने डेडिकेट करना है, मैं सोच रहा हूँ कौन सा गाना जो है मैं इनको डेडिकेट करूं। लेकिन जो आजकल हालात है और जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके की है।

क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक। सर काला डोरिया प्ले कर रहे हैं भाई, शादी हो रही है। कौन हो तुम? नाम नहीं लिखा। अच्छा भाई डॉक्टर साहब, डॉक्टर आजाद, गाना आपको डेडिकेट दूसरा वाला करना है। ये थोड़ी, ये तो वैसे मैंने सुना दिया। नादिया मलिक कह रही है कि भाई क्या गाना प्ले किया, स्कूल ऑफ आर्ट्स की याद दिला दी। वाकई में यार ये उसी दौर का गाना है। और मिसेस फारूक थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और संजीता जी आपका भी शुक्रिया, गाने पसंद कर रही हैं। डॉक्टर वजाहत इस वक्त खुश घूम रहे हैं और मैं उनकी खुशी में जाना जरा और चार चार लगा देता हूँ। और ये गाना डॉक्टर साहब आपको और आपके साथ जो भी उनको मैं ये गाना डेडिकेट करने वाला हूँ।

वाह जना क्या बात है भाई शहजाद रॉय की। और ये भी आज भी ये गाना वैसे हिट है, जब भी प्ले करता हूँ लोग बहुत पसंद करते हैं। चलिए जी थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जनाब संजीदा जी आपको मेरा मशवरा है कि फायजा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें। सलीम मेमन भाई ऐसा ना हो फायजा ही बन के घूम रही हो, संजीदा सही है जैसे भी है ठीक है। फायजा जी इस्तेमाल की तुझे बड़ा पता है भाई, सलीम मेमन इस्तेमाल किए क्या? अच्छा भाई एक सॉन्ग डेडिकेट टू माय लव खालिद, कौन है अपना नाम तो लिखा नहीं आपने। नेक्स्ट गाना खालिद को मैं डेडिकेट कर देता हूँ, लेकिन जरा अपना भी नाम लिखो कि कौन सुन रहा है। मैं डॉक्टर साहब ने मैसेज कर दिया, मैं अभी थोड़ी देर में मैं जरा सुनता हूँ और फिर मैं इसका रिप्लाई करता हूँ। माजिया जी सुन रहे, माजिया कितने हो तुसी? माजिया जी भी बहुत हमारी पुरानी स्वीट सी प्यारी सी लिसनर, और करोड़ों साल के बाद जो है इन्होंने सुनना शुरू किया। मैं खालिद साहब के लिए एक बहुत अच्छा गाना, गुफरान भाई आ गए भाई हमारे प्यारे से इंजीनियर, तो वेलकम कहेंगे उन्हें भी। यार ये गाना ये याद आ गया, थोड़ा सा सुनाता हूँ उसके बाद ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। क्या ट्रैक था यार ये, जबरदस्त।

है जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी। और इसके अलावा माधिया जी क्या कह रही है, कह रही भाई कि अस्सलाम वालेकुम, कल ओपन हाउस DSS इंटरनेशनल बहादुराबाद, ओपन इनविटेशन फॉर ऑल कराची पीपल फॉर एडमिशन। अच्छा जमा स्कूल खुल गए, सबसे अच्छा काम है। मैं भी सोच रहा हूँ कोई स्कूल ही खोल ले बंदा, अच्छा खासा पैसा बंदा बना लेता है। फ्रॉम तुझे रख लूंगा मैं प्रिंसिपल। नुमान कह रहे हैं सर काला डोरिया रिकॉर्ड करना है प्लीज। अरे तो आज हमारी क्यूशीट में नहीं, मैं काला डोरिया कहां से ले आऊं, हमारे पास पीला नहीं है ना नीला है। तुम डोरियों की बात कर रहे हो, नुमान नहीं करो यार, क्यूशीट बनी हुई है उसको फॉलो करना। अच्छा जी, नादिया मलिक कह रही है कि फायजा क्रीम जो है ना ये इस्तेमाल ना करें, उन्होंने फौरन टोटका बता दिया फलानी चीजें यूं करके, यूं हल्दी यूं करके। मुझे नादिया मलिक तुम में ना जुबैदा आपा का ना टच नजर आ रहा है, थोड़े दिनों में ये इसने ना ये जगह बना लेनी, थोड़ा ही टाइम रह गया हुलिया का। तुम माशाल्लाह अभी भी अच्छी है वैसे, वो जुबैदा आपा तो क्या ही बात है, और आप भी माशाल्लाह। और खाने पीने की तो जो है ना वीडियोस बना बना के मुझे इस टाइम भेज देती है और मैं देख देख के खुश होता रहता हूँ। ये बता रही है कि मैं खाते पीते घराने से मेरा ताल्लुक है भाई, खुश रहो खुश रहो। अच्छा जनाब कहें प्रिंसिपल मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ ये बात प्रिंसिपल आपको रख लेंगे, बिल्कुल सही कहा। चले जनाब पुराने 90s के गाने जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, एक और ट्रैक याद आ गया मुझे, और ये मेरे बहुत प्यारे से दोस्त प्यारे से भाई अली हैदर भाई।

हेलो जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100। और नादिया मलिक कहनी है कि प्रिंसिपल जो है वो चाची को बना। वैसे आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया, लेकिन माजिया कहनी नहीं भाई मेरा स्कूल है तो, और वो कहनी कल आप ही जाएं वहां पे। मैं नहीं माजिया जी, मैं माजर चाहता हूँ, बस थोड़ा सा जरा बिजी हूँ आजकल, जरा बताऊंगा फिर कभी नेक्स्ट कोई इवेंट होगा तो इंशाल्लाह जरूर। अच्छा जनाब, और संजीदा जी ने बड़ा अच्छा, नादिया आपा जो है ना, ये नादिया मलिक का नाम रख दिया, जुबैदा आपा के बाद नादिया आपा। अच्छा जी, और कह रही है सदका दें अपने ऊपर से उतार कर लाजमी। ठीक हो गया जनाब, सदके क्या मतलब, मैं तो वैसे सदके बारी जा रहा हूँ। अच्छा जी, मेरी प्यारी सी चाची, बस मेरी चाची मुझे सुनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाचा की कोई पोइट्री है वो लिखी हुई है, बहुत तवील है थोड़ी बहुत, जरा मैं घर में चाची में आराम से जाके इसको पढ़ूंगा। हमारे प्यारे से चाचा बहुत ही नफीस इंसान। और अब एक बात मुझे चाचा की, हमेशा मैं पहले भी शायद जिक्र किया था और अभी दोबारा भी करना चाहूंगा, कि जो ही जन्मदिन करीब आता मेरा, मेरे बर्थडे का दिन करीब आता तो चाचा मुझे जरा याद आने लग गया। और ये पहली बर्थडे होगी जिसमें चाचा जो है वो नहीं होंगे। हर बर्थडे पे वो मेरे एक एक जबरदस्त सा केक, बड़ी ही जबरदस्त बेकरी से, हमारी फेवरेट बेकरी से वो लेके आ जाते। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आमीन बोले मैं सारे मिलके, आमीन सुबह आमीन। अच्छा जी, संजू बहुत प्यारी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, आंखें बंद करके अगर आप संजू को देखें बहुत प्यारी लगती है। और कह रही है कि शबाना आजमी और बाबरा शरीफ का मिक्सचर है। अच्छा, आपने बड़ी कोई आपने जो है ना वो क्या बात कर दी, मिक्सिंग वाली बात कर दी, फुल्टा मिलावट कर दी आपने तो। अयाज एक और इंग्लिश सॉन्ग अपनी पसंद का। अच्छा अच्छा, उमा जी को ना जरा इंग्लिश गाने बड़े पसंद है, और आपस की बात है मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं जो है ना लोगों को देखता हूँ उर्दू गाने ज्यादा सुन रहे होते हैं, तो इसलिए मैं जरा कम कम प्ले करता हूँ, वरना क्यू शीट मेरी जो है इंग्लिश गानों से भी मैं भर देता हूँ। जैसे कि ये गाना यार मेरा बहुत फेवरेट, और 80s की दौर जो है का जो दौर है वो भी याद आता है इस म्यूजिक से। थोड़ा सा सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं। हुमा जी आप ही को डेडिकेट करता हूँ, और मेरी प्यारी सी मिसेस फारूक भी बड़े पसंद करती है इंग्लिश ट्रैक। ओए होए, 80s के लोग इस म्यूजिक को और इस गाने को जरूर जानते होंगे।

हुआ जनाब, और मुझे याद पड़ता है कि किसी मूवी का साउंड ट्रैक भी याद करें। उमा जी जरा बताएं मुझे कौन सी मूवी। अच्छा भाई, हमें सुन रही हैं तानिया। तानिया हसन, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? अभी अभी सुनना स्टार्ट किया भाई, जब भी सुनना स्टार्ट करें आप। अच्छा भी दोस्त भी हैं, अभी मैं फायजा ब्यूटी क्रीम का जिक्र कर रहा था, फायजा दोस्त भी हैं। फायजा कैसी हैं आप ही की तो नहीं है वो क्रीम, और साथ में फरियाल भी है। भाई फरियाल याद आ गई हमारे स्कूल की, और नादिया मलिक की बेस्ट फ्रेंड थी फरियाल। नादिया फरियाल का कुछ आता पता है कि नहीं? अच्छा, ऑन एयर ही गुफ्तगू हो रही है डायरेक्ट, लाइव शो का ये भी मजा है। और जनाब संजीदा के, अरे वाह तानिया बहुत सारा प्यार, वो भी आपके लिए ये कह रही थी। अच्छा जनाब, आज रॉक और आपके अलावा रेडियो से हमारा कोई लिंक नहीं। अरे क्यों भैया, क्यों लिंक नहीं है? लेकिन बहरहाल आप लोगों का प्यार मोहब्बत है। अच्छा जनाब, और गाना जो है डेडिकेट करना है तानिया की तरफ से इनके फ्रेंड्स को। यार मुझे अचानक नदीम जाफरी याद आ गए, थोड़ा सा स्लो ट्रैक है लेकिन यार।

जाफरी याद आ गए, थोड़ा सा स्लो ट्रैक है लेकिन यार हिट गाना, और 90s की बात कर रहे हैं और 90s के गाने में आपको सुना रहा हूं, तो यकीनन ये गाना आपको याद आ जाएगा।

भाई जनाब सुन रहे हैं 100 आयाज अहमद के साथ और देखते देखते टाइम अब देखते ताम की जाने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतना प्यार इतनी मोहब्बत देने का और शो की इतनी तारीफें कर दी हैं मिसेस फारूक आपने, थैंक यू वेरी मच। इसी बात पर यार टाइम थोड़ा रह गया तो मैं जल्दी जल्दी आपको वो ट्रैक सुना देता हूँ जो आज प्ले होने से रह गए।

कोमल रिजवी जबरदस्त। अच्छा जनाब, चाची ने इतना क्यूट मैसेज कर दिया, कह रही है याद मत जाओ मैं उदास हो जाती हूँ। अरे चाची बस अभी को दूसरे आरजे आ जाएंगे, वो आपको एंटरटेन करेंगे भाई। मेरी क्यूट सी प्यारी सी चाची उदास ना रहा करें। अच्छा भाई तानिया कह रही है कि भाई अपनी बर्थडे जो है ना जरा डेट ऑफ बर्थ बताते रहो, भूल जाते लोग। वैसे तो लोग भी याद दिलाते रहते हैं और मैं भी। 6 नवंबर जनाब, अभी टाइम है, अभी काफी टाइम है। अरे यार ये एक मेरा बहुत फेवरेट गाना, आज भी मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। डायर स्टेट वॉक ऑफ लाइफ, थोड़ा सा प्ले करते हैं।

भाई टाइम क्यों कम रह गया, इसलिए पूरा तो नहीं सुना पा रहा कोई गाना, लेकिन यार ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक है ये। अच्छा जी, फैसल अनवर याद आ गए 90s के दौर में, और इनका ये वाला ट्रैक

क्या बात है जनाब, फैसल अनवर भी है उस दौर में काफी। अच्छा जी, संजीदा कह रही है शहजादे मेरा मजाक का बुरा तो नहीं मनाते, बुरे बनाने वाली मशीन में घर पे छोड़ के आता। बिल्कुल, आप इसकी टेंशन नहीं लगा कर, बिल्कुल टेंशन नहीं। अच्छा जनाब, इसी के साथ टाइम कह रहा टाटा बाय बाय। हाँ, एक और इतना अच्छा गाना मैं आपको ना सुना पाया, और वो कैसा था, थोड़ा सा सुना। बस इस गाने के बाद भी टाटा बाय बाय करते हैं।

राइट जनाब, इसी के साथ ही अयाज अहमद को दें इजाजत। हमेशा की तरह आप लोगों के साथ मैं बहुत एंजॉय कर, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: This program is brought to you by HPSI Banking के पास है poultry farm, fish farm, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत.
1: FM 247 365.

वेलकम बैक कहेंगे भाई स्नैपचैट स्टोरी आपने सुना बिलाल सईद की आवाज और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो क्यों ना बढ़ा जाए सवाल आज की जानिब। आज के सवाल फ्लोट कर लेते हैं भाई। पहले जनरल नॉलेज का सवाल है, दुनिया में कितने बर्रे आजम है सबको पता भाई, बस आपने ये बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है। बहुत ही आसान है और इसके साथ ही साथ ये भी बता दिए कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, किस नाम से। ये बहुत ही आसान से मैंने सवाल जो है आपसे कर लिए हैं ताकि आप लोग जहन पर ज्यादा जोर ना डालें। तो बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब एज यूजुअल। सबसे पहले फीता काटा है हमारे प्यारे से यूसुफ भाई ने पापूस। तमाम सुनने वालों को और एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम का है, खुसूसी तौर पर आंटी को, चाची को, अरूसा को, गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स, इमरान भाई, खिताब उल्लाला, गुफरान भाई और आपके वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में अकीदत भरा सलाम। ये कहते हैं हमारे लिए दीन साहब हमेशा, लेकिन इन्होंने अस्सलाम वालेकुम ही कहा है। और एस गुल हमारी प्यारी सी बहन भी आ गई हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई लाला को, संजीदा को, संजीदा आप ही को, मुश को, महानौर को और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं, ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए भी। ये हैं हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ, आज जाग रही हैं। अरे वाह भाई वाह, कह रही है थोड़ा सा सरदर्द हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा बुखार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा जुकाम हुआ है, थोड़ा है बाकी, और थोड़ा सा गला खराब हुआ है, थोड़ा सा है बाकी। आखिर में कहती है सब कुछ तो हो गया है, बस खांसी है बाकी। ये क्या बीमारियों वाला मैसेज भेजिए और तमाम बीमारियां एक साथ, वाह वाह वाह वाह वाह। और कहती है कि तकब्बुर इंसान को रुसवा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो या ताकत का, रुतबे का हो या हैसियत का, हुस्न का हो या इल्म का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो। आखिरी जुमला ओके ठीक है, चाहे वो तकवे का ही क्यों ना हो। तकब्बुर जो है वो तो सबको नजर आ जाता है, दौलत का भी नजर आ जाता है, ताकत का भी नजर आ जाता है, रुतबे का भी नजर आ जाता है, हैसियत का भी नजर आ जाता है, हुस्न का भी नजर आ जाता है और इल्म का भी नजर आ जाता है। तकवे का जो है वो कैसे नजर आता है ये हम बताएंगे, चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन हम मुझे अपना एक शेर याद आ गया तकब्बुर पर और हुस्न पे। हुस्न तकब्बुर की इजाजत है उसे, वाह वाह वाह, हालांकि तकब्बुर रुसवा कर देता है। तो शायर क्या कह रहा है, यानी कि मैं, कि हुस्न तकब्बुर की इजाजत है उसे, है कोई उस जैसा तो ला कर दिखा। हाय हाय हाय हाय, यानी कि समझ रहे ना आप। हाँ, रूहे जां को सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं। बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा नदीम भाई मेरी रूहे जान को, पक्की बात है। ओके फिर हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम एशिया है, चले आधा तो मैंने बता दिया, सबसे छोटा कौन सा है ये बताइए। इन्होंने सही बता दिया वैसे। वाह वाह वाह वाह वाह वा, भाई क्या बात है, सारे जवाब ओके टेक दे दिए हमने, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जनाब मह जमीन आ गई है। मह जमीन आपने मेरा शेर सुना, कैसा लगा आपको जरा बताइएगा। कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप शो सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं ये अभी तक मुझे मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब। समी आ गए हैं होने वाले दूल्हा, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप, सलाम टू ऑल लिसनर। वालेकुम अस्सलाम भाई दूल्हे हैं, तैयारी कैसी चल रही है भाई, कोई बिरयानी श्रियानी का ऑर्डर दे दिया।
और आगे बढ़ते हैं जनाब. अस्सलामु अलैकुम टू यू एंड ऑल लिसनर. हाउ आर यू? हाउ वाज द डे? अल्हम्दुलिल्लाह. अम्मी जी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी के लिए ढेरों सलामती की दुआएं दी हैं हमारे फरहान रजा साहब नवाब शाह सिंध से. अम्मी जैसी प्यारी आयशा जी को कहते हैं अम्मी, और अम्मी जैसी प्यारी जो हमारी प्यारी सी आंटी हैं, राज दुलारी आंटी हैं, आंखों की तारा आंटी हैं. भाई आपने भी दुरुस्त जवाब दे दिया है फरहान भाई, हमेशा की तरह. और सलाम कैसे हैं वाली साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम का है हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर ने. वाओ वाओ वाओ. अच्छा मेरा दिल कर रहा है कि एक फरंगी गाना हो जाए बड़ा जबरदस्त किस्म का है भाई, मुझे मेरा दिल कर रहा है भाई. तो एक फरंगी गाना यानी कि इंग्लिश ट्रैक आपको सुना रहे हैं और दिल चाहे तो झूम जाइएगा. हाय हाय, आपने बताना है ये गाना किसने गाया है.

welcome back. Kya gana hai, beautiful track, and I hope you like it. तो आपने बताना है ये सिंगर कौन था. संजू आ गए हैं, क्या कहती हैं संजू. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इज्जत मन महबूब मन, क्या बात है मेरी रूह मन. सलाम थी और आफियत की अनगिनत दुआएं, सलामत रहें दिल की धड़कन की धक धक से. खुशामदीद कहती हूँ. इस हफ्ते का कामयाब प्रोग्राम का आखिरी दिन भरपूर तरीके से इख्तिताम पजीर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू थैंक यू. सोचती हूँ रुहमन, वक्त आप पर खत्म होता है और मैं वक्त से आगे आप में ठहरा रहना चाहती हूँ. आए हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, क्योंकि आप मेरा आखिरी जमाना हो. वाओ, और मैं आप में अब्दियत लिख देना चाहती हूँ. तसव्वुर जाना जिंदगी की गहमा गहमी ने जब फुर्सत दी तो रात के हर पहर ने आपकी महसूर को नवाज ने सुकून पहुंचाया. इन लम्हों से महफूज होती हूँ जिसमें जिंदगी के हर रंग होते हैं. शामिल प्रोग्राम होने वालों की दिलचस्प गुफ्तगु पैगामात प्रोग्राम को ना जाने कितने चांद लगा देते हैं. माशाल्लाह से इख्तिताम तक साथ हूँ हमेशा से. भाई सबसे पहले तो इंतहाई इंतहाई इंतहाई शुक्रिया आपका. इतने खूबसूरत लफ्जों का चुनाव, इतनी तारीफ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के. ये आपकी हुस्न समात है, यकीन मानिए बंदा ना चीज कुछ भी नहीं, बस आपकी हुस्न समात है. और जैसे रूहे मन, वाह वाह रूहे मन, एक दोस्त का पैगाम आपके नाम, मुझे यकीन है तुम मसरूफ हो बहुत. मुझे यकीन है तुम मसरूफ हो बहुत, नहीं वक्त कॉल का कोई बात नहीं, ना पूछो हाल मेरा कोई बात नहीं, मगर एक बात बताओ. कभी कभार तुम्हारी हजार मसरूफियत में जो चंद लम्हे बचते हैं, उन चंद लम्हों में कभी कभी मुझे एक बार तो सोचते होगे ना. इस का जवाब जो है उसने सॉन्ग की सूरत में चाहा है. वाह वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है. और वैसे ऐसा होता भी है. खैर जी, वो सॉन्ग की सूरत में उनको जरूर रोहिमनम गाना डेडिकेट करेंगे. और ये पैगाम जो है ये काफी दिलों की जो है आवाज है. तो मुझे यकीन है कि तुम मसरूफ हो बहुत, वाह वाह, वक्त नहीं है कॉल करने का, कोई बात करने का, कोई हाल पूछने का, मगर एक बात बताओ. कभी कभार हजार मसरूफियत में जो चंद लम्हे बचते हैं, उन चंद लम्हों में कभी कभी मुझे एक बार तो सोचते हो ना. हाय हाय हाय हाय, ये उम्मीदें उम्मीदें मोहब्बत है. वाह, और ये एक इतना खूबसूरत एक क्या कहें कि एक एहसास है मोहब्बत का कि इसमें ना उम्मीदी नहीं होती. यकीन माने आखिरी सांस तक ना उम्मीदी नहीं रखता इंसान. मैंने मतलब है ऐसे, ये मैं ऐसे मिसाल एक दे रहा हूं कि अपनी जिंदगी में ऐसे देखें कि लड़का जो है मोहब्बत किए जा रहा है. ये मैं अपने दोस्तों के हवाले से एक बात बता रहा हूं कि खातून से मोहब्बत, लड़की से मोहब्बत किए जा रहा है, वो उसको घास तक नहीं डाल रहे, मगर उसने उसकी उम्मीद दम ही नहीं तोड़ रही थी. आप यकीन मानिए कई साल गुजर गए और कई सालों के बाद जो है उसकी जो मोहब्बत है वो रंग ले आई, उसके दिल में जगह बना ली उसने. वाह वाह वाह, ये आपके जो एक दोस्त है ना, उनसे मुझे अपना एक दोस्त याद आ गया. भाई क्या बात है क्या बात है, मजा आया भाई मजा आया. और आगे बढ़ते हैं जनाब. अच्छा, हमारे साहबजादा साहब, आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं यार, आपने भी चुटकुले लिखकर भेजना शुरू कर दिए. बीवी कह रही है डार्लिंग आपने दूसरी शादी करना,
आप दूसरी शादी करना चाहो तो कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। शोहर बेगम पहले ही कर रखी है आपसे छुपा कर। बीवी, मैंने भी बेलन छुपा कर रखा हुआ है। और फिर हुआ जनाब दे धनादन दे धनादन। चार्ली आ गए हैं हमारे और कह रहे हैं सलाम मैंने भाई, शो ऑसम, बिंदास, बोले तो झगड़ा। स्वीट खट्टी नमकीन फैमिली को मेरा चटपटा सलाम। अमीन को अहमद जहांसेब का सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। थैंक यू चार्ली भी तुम और अमीन भी तुम, क्या बात है भाई। कर देंगे जनाब कर देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। कल का शो बहुत अच्छा था और संजू के इंतखाब तो कमाल का था यार। वाकई में कल मुझे जो पहला इंतखाब था ना, कमाल का लगा था यार। जैसे अभी इनका ये वाला जो दोस्त का मैसेज है, वाह वाह वाह। और आपने तो सुपर पढ़ा, आपके पढ़ने का अंदाज तो, अल्फाज खत्म किया बोलूं मुझे रोना आ गया। हाय सो स्वीट, मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर का ये मैसेज है। स्वीटी स्वीटी स्वीटी सा मैसेज, जीती रहो और रोना नहीं है, खुशी के आंसू आए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मैं जमीन ने बता दिया है, वाह भाई वाह। और पहले तो ये माइकल जैक्सन का गाना था, ये डोंट स्टॉप इसका जो है वो टाइटल है, जो मैंने आपको सुनाया था यार। ये मुझे इतना पसंद है मैं आपको बता नहीं सकता यार, क्या बात है माइकल दी। माइकल का ये गाना, और इन्होंने कहा कि उसके बाद रिमिक्स बाय जाफर जैक्सन। लगता है महजमीन ने माइकल मूवी देखी है। अच्छा माइकल मूवी किस किस ने देखी है, क्या मूवी है यार, वाओ। लो जी दुबई तो मैसेज आ गया है, क्या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फरीन। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मुस्कुराती रहे। और उन्होंने तमाम फैमिली को भी सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। ओए होए होए होए, अब एक मसला है भाई। समी कह रहे हैं दुआ कीजिएगा मुझे एक अच्छा सा रेंट का घर मिल जाए। ओए होए, अम्मी ने निकाल लिया अभी से। खैर वो मैं सही हंसा यार, लेकिन ये है कि ये मसला किस हवाले से, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ये बच्चे की शादी हो रही है तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे प्यारे से ये समी भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि इनके तमाम मसले जो है शादी से पहले हल हो जाएं। और सिंगर का नाम इन्होंने माइकल जैक्सन बता दिया है। हाय हाय। और एक ट्रैक का गाया फ्यूचर वाइफ के लिए उन्होंने। ओके भाई, क्यों ना इसी बात पर हम आपको एक गाने की जानिब लेकर जाएं। अच्छा ये ट्रैक मैं सोच रहा था कि बाद में, हाँ बाद में ही चलाऊंगा भाई, मैं बाद में चलाऊंगा। फिलहाल आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रैक सुना रहे हैं जनाब, और ये ट्रैक जो है डेडिकेट करेंगे आप सबको। नया ट्रैक है, इस सिंगर का भी नाम बताना है आपने कि कौन सा सिंगर है।

वेलकम बैक कहेंगे हुसना दी सरकार। किसने गाना गाया ये बताएं। हालांकि ये बहुत इजी है क्योंकि बहुत ही पॉपुलर सिंगर्स के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी कुछ नए गाने चलाऊंगा तो फिर पूछूंगा कि भाई ये किसने गाया बताइए तो सही। और आज तो बहुत रौनक है महजबीन के आने से माशाल्लाह से। कराची में खुशामदीद। संजू कह रही है

वेलकम बैक सुनियो, तो मैनू पागल कर गए ओए। ये भाई इतना ट्रेंड में था ट्रैक और बहुत ही मशहूर हुआ। निम्रा सिंगर का नाम है और बहुत पॉपुलर हुआ ये ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होएगा। और एस गुल कह रही है थैंक्स नदीम भाई, दुआ के लिए जीती रहो मेरी प्यारी सी बहन। और मैसेजेस ढूंढ रहा हूँ भाई। फरहान भाई कह रहे हैं कि एक मैंने आपको ट्रैक कहा है वो जरा प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे जनाब, टाइम भी बताया इन्होंने। बिल्कुल जनाब उसी टाइम पर प्ले कर देंगे भाईजान।

0: जनाब जनाब जनाब स्क्रॉलिंग हो रही है बेसिकली, और नौरीन बहना कहती हैं कि अपने वालिद का अच्छा वाला सॉन्ग आपकी आवाज में आज हो जाए फिर नदीम भाई। और सिंगर का नाम भी बताया इन्होंने भाई, माइकल जैक्सन भी बताया और अबरारुल हक भी बताया। चलें जी आपके लिए हम मेरी प्यारी सी बहन जरूर थोड़ा सा वालिद साहब का गाना जो है आपको गाकर सुनाएंगे। समी कह रहे हैं अबरारुल हक। और आगे पता नहीं कौन सी जुबान में लिख दिया, समी क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं मेरे शहजादे। और मुश्क कहती है संजू को पंजाबी नहीं आती है, एंसम मुझे सॉन्ग की डेडिकेशन पसंद नहीं। बात तो सही है वैसे, मैं भी जानता हूँ। उसको वाकई में समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ गाने हमने रखे हुए हैं ओके ठीक टाइप के, अब उसको डेडिकेशन इतनी होती है तो एक इस तरह का भी सही भाई, और एक हम अपनी जानिब से भी करेंगे। खैर जी आगे बढ़ते हैं। और समी का फिर मैसेज आ गया, सभी सिंगर का नाम बता रहे हैं, अभी मैं पूछता हूँ फिर आप बताइएगा समी साहब नाम। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब भी हमारे आ गए हैं और कहते हैं वाजिबुल एहतराम नदीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, सज्जाद अली की आवाज में कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा बड़ी मेहरबानी होगी। इमरान रियाज, नसीम कुरैशी, खिताब उल्लाला, समी शेख, अयूब आफरीदी और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा हर लम्हा दुआ को। नेक ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एफ बी एरिया कराची से। और नदीम भाई अगर हो सके तो आप अपनी आवाज में, अरे वाह भाई फरमाइशें आ रही है, सॉन्ग अच्छा सा सॉन्ग अपने और लाला के नाम कर दीजिएगा। लाला की इधर गायब है आज तो लाला नजर नहीं आ रहा यार, ये तो गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। और स्क्रॉलिंग साहबजादा भाई का मैसेज हो गया था और एसगुल का भी हो गया था, जरीन महना का भी हो गया था। अच्छा रिजवान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने भी अबरार का नाम बता दिया, अबरारुल हक का। और जनाब साहबजादा बता रहे हैं जावेद मियादाद पहली बार टीम के साथ वेस्टइंडीज के टूर पर गए थे, डिनर पर अपने लिए माउंटेन चिकन मंगवाया, थोड़ी देर बाद सीनियर प्लेयर सरफराज नवाज भी आ गए और जावेद क्या खाया, माउंटेन चिकन खाया है सरफराज नवाज बता रहे हैं, ये यहाँ मेंढक यानी फ्रॉग को बोलते हैं। मियादाद को उल्टियां लग गई। और ये वाकया जो है ये मुझे मैंने पढ़ा हुआ है, साहबजादा साहब ने ये भेजा है और बिल्कुल दुरुस्त भेजा है। अच्छा जी अमीन भाई कह रहे हैं सलाम मुश्क बहना चार्ली भाई, शो की रौनक है पगली हा हा हा हा, पगली हा हा हा, डोंट माइंड आई एम जोकिंग, वाह वाह वाह वाह। मुश्क बहना को डेडिकेट कर दीजिएगा अहमद जानसेब का ट्रैक, बिल्कुल कर देंगे जनाब। दादू से साई हमारे अनवर पिताफी भाई आ गए और कह रहे हैं कि दोस्तों की जानिब से एफएम की तमाम टीम को सलाम अदा, साई सिंधी कलाम अगर हो जाए तो बिल्कुल होगा जाए साई, डोंट वरी साई डोंट वरी। और जनाब सलाम के बाद कह रहे हैं भाई अनम मेमन अरूसा मेमन का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था किडनी का, हम वहां पर हैं सब कजन्स, कब डिस्चार्ज करते हैं, कंडीशन बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला मेरी प्यारी सी बहन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप तमाम मेमन कजन अल्लाह ताला आप सबको जो है सेहतमंद रखे और तंदुरुस्ती अता फरमाए, खुसूसी तौर पर अनम मेमन अरूसा मेमन के लिए है ये दुआएं और हमारी हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ है, डोंट वरी और इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये मेरा दिल कह रहा है, यानी कि समझ रही है ना आप। और जनाब अब मेरा ख्याल है गाने की जानिब जाना चाहिए और अभी जो ट्रैक हम चला रहे हैं जनाब ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर वाइफ को समी साहब की, एल्लो फड़ो
1: Good boy.

वेलकम बैक कहेंगे। भाई भाई सुन बलिए, सुन चोनिए, क्या बात है भाई, सही जा रहे हो भाई। और वालेकुम अस्सलाम अलीम भाई और अल्लाह पाक इरफान भाई की कजन्स को जल्द से एहतियाब करे। इरफान भाई की बहन, हमारी प्यारी सी बहन अरूसा मेमन, उसकी तबीयत सही नहीं है और उन्होंने बहुत सारी दुआएं की हैं। समी का मैसेज पढ़ रहा हूँ और कह रहे टेम्पो से थोड़ा सा हटकर मैंने गाना बोला था, आपने चला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और

और रथीम भाई इंग्लिश गाने का सिंगर बीजीज लगता है. अरे मैंने नाम भी ले दिया फिर भी साहबजादा साहब आप बीजीज कह रहे हैं. ये माइकल जैक्सन थे. ये बीजीज का गाना अगर आपने सुनना है तो वो भी हम आपको सुनाएंगे बीजीज का. हाय हाय हाय, कौन सा गाना बीजीज का सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ ये भी आपने मुझे बताना है. यानी कि समझ रहे हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. अच्छा जनाब, अब क्योंकि थोड़ा सा स्लो गाना चलाया था तो एक गाना मुझे बड़ा पसंद है तो मैं चाहूंगा वो जरीन नूर की जानिब से हम डेडिकेट करें. कहां गया भाई वो गाना? हाँ, ये वाला गाना है जनाब, और हमजा मलिक ने गाया हुआ है, उनके साथ जैन है ये, और मुझे बहुत पसंद है. इसकी लिरिक्स भी बहुत प्यारी हैं. तो जनाब ये ट्रैक जो है जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन की जानिब से संजू के लिए. इस गाने की आपने रिव्यूज भी देने हैं सबने, और आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है ये ट्रैक. सुनिएगा और बताइएगा जरूर कैसा लगा.

और जनाब आज आवाज बहुत अच्छी लग रही है आपकी भाई, खुश लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेमन फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं की हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने। स्लीपलेस नाइट में कहूंगा आपको खुश आमदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक और ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी रहेगा। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, नाम क्या है उनके, ये आपने बताना है। यानी कि समझ रहे ना? हाँ, वाह बेहतरीन, शुक्रन रुहन जरीन नूर का भी थैंक्स कहा है संजू ने। और आगे बढ़ते हैं। मेरा मैसेज शामिल किया आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब। यार ये मैसेज करके शर्मिंदा ना किया, मोहब्बत है आपसे यार, प्यार है। शो जबरदस्त हो रहा है, मुश कह रहे हैं। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा। और मुश्क के कुछ और बड़े मजेदार किस्म के मैसेजेस हैं। कहती हैं कि मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया बल्कि वही ईंट उठाकर मार दी, अब पत्थर कौन ढूंढे। और जो है बर्रे आजमों के बारे में पूछा है तो उन्होंने जवाब दिया सबसे बड़ा कायदे आजम, सबसे छोटे जो है बाबर आजम। वैसे बाबर आजम कुछ ऐसे ही चल रहे हैं आजकल, पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज हो रही है क्रिकेट लवर्स के लिए हंसी आती है अब देखकर टीम को। वाकई में हंसी आती है, ये पाकिस्तान की ही टीम है मैं सोचता रहता हूँ। और नदीम भाई ये वाह का मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, आपने कौन सी जुबान में लिख दिया? जरा मेरा बच्चा सबागुल मुझे बताओ कि पूछना क्या चाह रही हो। और अल्लाह सेहत दे अरूसा मेमन आप ही को और अनम आप ही को, आमीन। सबागुल कह रही है, अनवर पताफी भाई हमारे कह रहे हैं भाई आज जरूर सही, जरूर जरूर जरूर सही, आपके लिए गाना निकाला हुआ है सही, अभी चलाएगा, अभी थोड़ी देर में चलाता है। और हमारी प्यारी सी बहन जरीन नूर ने थैंक्स कह दिया है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो भाई हमारे अनवर पताफी भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए यानी कि समझ रहे हैं ना गाना होना चाहिए, उनके कचेरी में भी सही बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग।

वेलकम बैक आएंगे भिट जा बिटाई ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको भी पसंद आया होगा। मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NASO। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक करेंगे खूब हल्ला ते गुल्ला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग मुझे मैसेंजर्स पर मैसेजेस कर रहे हैं उनसे अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैसेज मत करें, क्योंकि मैं अब वो मैसेजेस आपके नहीं पढ़ सकूंगा। अगर आपने मैसेज करने हैं तो मैं आ चुका हूं लाइव आज, हैं जी जी हैं जी। तो लिहाजा फौरन से बेशतर यहां पर आ जाएं, संजू आप भी आ जाएं, अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब आप भी आ जाएं, और हमारे नौरीन बहना, फरहान भाई, जितने भी जो मुझे मैसेजेस यहां पर करते हैं वो तमाम के तमाम जो है अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो फौरन से पेशतर, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, भिट जा बिठाई आपने सुना और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और अभी फौरन से पेशतर मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूं, एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, और हमारे साहबजादा साहब ने कहा था बीजीज का नाम लिया था, तो बीजीज से मुझे याद आ गया और दिल कर रहा है। क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक।

beautiful track. Welcome back. Messages आप क्या रहे हैं 3636 पर. And right now मैं Facebook पर live भी हूँ, लिहाजा यहाँ पर भी आ जाओ भाई, अपनी appearance दिखा दो. Wow. अच्छा, समंदर का नाम बता दिया है साहिबजादा साहब ने, ये दुरुस्त बताया आपने. फरहीन भी आ गई. खैर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम रिजवान हूँ. कल का शो बहुत अच्छा था, एसएमएस शामिल करने का शुक्रिया. लंडा बाजार वाला गाना सुना दे भाई. ये कौन सा गाना है भाई? रूहेवन बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? रूहेवन हम भी बिल्कुल ठीक, आपके सामने हैं. यानी कि समझ रही है ना आप? और जनाब, मैसेज कहाँ से शुरू करें? स्क्रॉलिंग हो रही है. हाँ जी, थैंक यू के बाद वाला मैसेज. अनीस कह रहे हैं कि नदीम भाई, आपका प्रोग्राम रोज टाइम से सुनता हूँ, आपको मैसेजेस करता, कभी मैसेज रिसीव नहीं होता. इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. महेश कोचरा आ गए, कह रहे हैं सलाम नदीम भाई. वालेकुम अस्सलाम. लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं माजरत, हम दुआ करते हैं कि सदा खुश रहें. भाई हम भी दुआ करते हैं कि आप भी सदा खुश रहें. यानी कि समझ रहे हैं ना आप? मैसेज करना तो एक बहाना है, असल में आपके पास अपनी हाजिरी लगाना है. सो स्वीट अनीस भाई, जीते रहे, मुस्कुराते रहे. लेकिन आप सुनते रहते हैं, तो अगर आपके मैसेज नहीं भी आएंगे तो हम आपको अब याद रखेंगे हमेशा. वैसे याद रखते हैं हम सबको, यानी कि समझ रहे हैं ना. और एस गुल कह रहे हैं अनिल भाई, जो सभी मैंने सॉन्ग कहा था उसमें ये लफ्ज था. अच्छा बताता हूँ अभी इसका मतलब. मोश्का आ गई, कह रही हैंडसम आदाब तस्लीमात. शनाया माही भी आ गई है, क्या बात है भाई. कैसे हैं आप और आपके बाबूजी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं. कह रहे हैं कि एफएम 100 की तमाम फैमिली को शनाया माही का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और लुकिंग ऑसम माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. अलीमुद्दीन साहब आखिरकार आप भी आ गए. कह रहे वाजिब उल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अगेन. यानी कि समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, मुश्क पूछ रही है कैसे हैं हैंडसम. अब आप देख रही हैं ना कैसे हैं, पूछना नहीं चाहिए वैसे. और जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन ने जवाब दे दिया है, और बिल्कुल दुरुस्त दिया है जवाब आपने. हमारे सलीम मेमन भाई भी आ गया है, कहते हैं समी भाई क्या आपको रेंट में गाड़ी चाहिए? तो मेरे बराबर में 3 रूम का घर खाली है. अच्छा, रेंट में घर चाहिए, मैं समझा कार चाहिए. 3 रूम का घर खाली है, 5वें फ्लोर पे. अच्छा, 5वें फ्लोर पर 24 घंटे लाइट नहीं जाती, लेकिन पानी खड़ा है यहाँ पर. खारा है, पानी खारा है. सलीम अहमद साहब कह रहे हैं. सलीम अहमद भाई क्या बात है. जरीन नूर मेरी प्यारी जी बहना कह रही है सलाम भाई अगेन. वालेकुम अस्सलाम. अरे मुश्क, इस तरह की बातें नहीं करते, यानी कि समझ रहे हैं ना. अच्छा भाई, अभी मैं एक बहुत जबरदस्त ट्रैक की जाने में आपको लेकर जा रहा हूं, और ये ट्रैक जो है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक है. और ये बेसिकली अभी जो गाया है, पहले शजर और फखर ने गाया था, मेरा फेवरेट बैंड, मेरे बहुत प्यारे से भाई, मेरे दोस्त, मेरे कजन्स. और उसके बाद इन्होंने फखर अब्बास ने जो है इसको दोबारा रीमेक किया है, रीअरेंज किया है, और बहुत मजा आया मुझे ये सुनने के बाद. तो फखर अब्बास का एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, ट्रैक का टाइटल है चला हूं, ये ज़हन में रखिएगा. और फखर अब्बास, ये आप चाहें तो इसको जरूर सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगे. बार बार सुनिएगा भाई, बार बार सुनिएगा. एलो फड़ो.

0: Welcome back, Jalahun, apne raahun. Ghufran bhai, Ghufran ke liye duaen bhai aapke liye bahut sari. Sanju keh rahi hai, Ani bhai keh rahe hain aap bole bhi, bole bhai zarur aaunga. Hamare Ani bhai jo hain actor and director, but radio mein tasveer nazar nahi aati, masla ye hai, yakeen mane. और बहुत जबरदस्त मतलब डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, ये भी है जी.
1: शो में बुलाए ना?
0: हाँ, मैंने हनी भाई कह रहे हैं जब बुलाएंगे आप मैं आ जाऊंगा. तो बस हो गया हनी भाई, बस वक्त यही होगा. सजाद अली की आवाज में सॉन्ग सुनवा दीजिएगा. सुनवाएंगे भाई, जरूर सुनवाएंगे, जरूर. और अच्छा, समी साहब कह रहे थे कि मुझे घर की जरूरत है, तो सलीम मेमन साहब ने एक घर के बारे में बता दिया. सलीम मेमन भाई, लगता है मुझे कि साइड में बिजनेस चल रहा है ये वाला है फुल टाइम, यानी कि समझ रहे ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में. अच्छा भाई, बहुत सारे मैसेजेस. अरे मेरी आवाज भी सुनना चाह रहे हैं. हाँ, गा के अच्छा जी, अदनान साहब इज वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच. और चुटकला आ गया है, मेरा ख्याल है ये साहबजादे की जानिब से चुटकला ही है. नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं मैसेज है. नदीम भाई, जनरेटर सेल की नौकरी में आया तो मुझे पहले हिज्जे करने पड़ेंगे. तारे कह रहे हैं सर क्या हाल है. ओके ठीक है भाईजन, आप सुनाए आपके क्या हाल है या बेहाल है. वैसे तो पूरा पाकिस्तान बेहाल है. जी जी,
1: देख भी रहे थे, फिर भी पूछते क्या हाल है.
0: हाँ नहीं नहीं, ये मोहब्बत मोहब्बत का तरीका, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत होती है, और ऐसी बात नहीं है. ये मोहब्बत का इजहार है, यानी कि समझ है ना. खैर इसी बात पर क्यों ना ले जाया जाए आपको एक अदर ट्रैक की जानेब. और अभी अरे यार, मैं वही वाला सुना देता हूँ. ये जो सबकी फरमाइश आ रही है उसके हवाले से एक वाले साहब का गाना, जावेद अख्तर साहब, द ग्रेट सिंगर ऑफ पाकिस्तान, लिविंग लेजेंड, उनका एक ट्रैक के बारे में मुझे दो फरमाइशें आई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सुना दिया जाए थोड़ा सा ट्रैक. तो आप सबकी समातों के लिए, आप लोगों को म्यूजिक तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर रेडियो में सुनेंगे तो म्यूजिक भी आपको आएगा समझ में.

0: वेलकम बैक कहेंगे जी। जब इन कह रहे हैं कि सॉन्ग अच्छा था आपके वालिद साहब का, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुब आमीन, थैंक यू वेरी मच। संजू कह रही है अच्छा, संजू आपस में बातें कर रहे हैं लोग। शिनाया कह रही है फुल्ली इंटरटेनमेंटल। ओके जी, अच्छा जनाब आप लोगों को एक बड़ी जबरदस्ती बात बताता हूं, और वो बात ये है कि हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त हनीफ भाई जो हैं, हनीफ खान जो कि जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि एक्टर एंड डायरेक्टर, वो इस वक्त फेसबुक पर मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारी खुशनसीबी कि हमारी भाभी भी देख रही हैं, मारिया हनीफ खान, और वो माशाल्लाह से आरजे भी हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो फिर जरा सा जी,
1: इसका नाम ही बताया ना।
0: इसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। और जी जनाब, मैं बता रहा था आपको कि आरजे भी हैं, तो जाहिर है फिर जरा संभल कर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। और अमीन कह रहे सलाम, आई एम चार्ली। चार्ली आपका गाना, बस अब आपका ही गाना आना है। यस, आपका गाना आने वाला है नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू। नहीं, नेक्स्ट सॉन्ग नहीं, नेक्स्ट ही नेक्स्ट। और गुफरान एंड काशिफ की शक्ल भी दिखा दें, देखने वाली नहीं है। मत देखे तो अच्छा है।
1: अच्छा ये देख के मजे ले बस।
0: हाँ, यहाँ से इजाजत चाहूंगी। नहीं संजू, आपने नहीं जाना है यहाँ से, हम आपको कह रहे हैं कि आपने नहीं जाना है। उसका रीजन ये है, नहीं नहीं अभी नहीं, उसका रीजन ये है कि हमने आपको एक गाना डेडिकेट करना है। जब वो गाना सुन ले आप, तो फिर चली जाइएगा यहां से। और नाइस ब्यूटीफुल शो, थैंक यू वेरी मच। हनी भाई कह रहे हैं कि शो माय भाभी को और मुझे साथ बोले बहुत जबरदस्त जाएगा। ओके, शो में आप दोनों को 100% डोंट वरी। अच्छा भाई, सलीम अमन भाई क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और मैसेज है जनाब नदीम भाई, आपने टॉप गन तो देखी होगी मैवरिक की, और टॉम क्रूज जो फाइटर जेट उड़ाता है वही कौन सा है, वो कौन सा है वो, अब हमारे पास सड़ रहे हैं वो, मेरा ख्याल है समझ गए होंगे आप। जब इन कह रहे हैं क्या आप नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही इंटरटेनिंग है, या ये अंदाज एफएम तक महदूद है। हाय अल्लाह जी, हम आपको क्या क्या बताएं, हैं जी जी हैं जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों राज पढ़ते हो सर्दियों की शाम। और अमीन का गाना चलाएं, नहीं चलाएंगे अभी, हमने एक ट्रैक चलाना है, लेकिन आप पहले ये म्यूजिक सुने, ये म्यूजिक सुने थोड़ी देर।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। अच्छा जनाब, अभी हम एक बहुत प्यारे से थोड़ा सा अब माहौल चेंज कर रहे हैं हम, लेकिन माहौल इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि थोड़े से मैलो से ट्रैक, क्योंकि रात के 2:30 बज चुके हैं। 2:30 बजे कौवे भी सो जाते हैं, यकीन माने लेकिन हम एक सो ही नहीं रहे। तो खैर, लेकिन ये एक ऐसा टाइम होता है कि इसमें वैसे तो मैं हल्ला गुल्ला ही कर रहा होता हूं, आपको पता है, लेकिन थोड़े से मैलो से ट्रैक चले ना तो वो भी जो है ना रूह की गिजा बन जाते हैं। तो एक बहुत जबरदस्त ट्रैक है, ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं रूह मन को अपनी जानिब से। एलो फड़ो, इसके सिंगर हैं जनाब जोहेब कैफे और जारा, और उसके साथ नादिया अली।

0: वेलकम बैक। अच्छा जी नदीम भाई खुश रहे, आज वाजिद साहब का सॉन्ग गाकर दिल खुश कर दिया आपने, वाजिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अनि भाई एन संजू कह रही है पहली बार सुन रही हूँ, कैसा लगा संजू? इसका टाइटल क्या है हम आपको जरूर बताएंगे। पहले भी सुना है मुझे ये सॉन्ग, अभी भी सुन के अच्छा लगा है। पहले कहाँ सुन लिया आपने?
1: मैंने तो फर्स्ट टाइम चलाया।
0: और टाइटल आपको संजू आपको बता देंगे। और मुश्क का भी मैसेज आया जनाब, उन्होंने भी बोला बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, ट्रैक आपको पसंद आया। नवीद भाई हमारे छोटे भाई जो है उनका भी मैसेज आया है और वो कह रहे हैं
1: आतिफ असलम का गाना हो जाए तो क्या बात है। भाई जान अभी कैसे हो सकता है, टाइम देखो टाइम।
0: और सवाल का जवाब है, अरे हाँ सवाल का जवाब अभी नहीं, थोड़ी देर में देंगे। जरीन नूर आपने दुरुस्त जवाब दिए थे मेरी प्यारी सी बहना, सारे जवाब आपने दुरुस्त दिए थे। नदीम भाई जस्ट जोकिंग, साहबजादा भाई नो जोकिंग, आपके सवाल सारे अच्छे लगते हैं मुझे। टॉप गन में अगर जो जहाज इस्तेमाल हुए आई थिंक F-16 थे, आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग। और बिन जीशान गुटका लिखा हुआ है इन्होंने, किसके लिए भाई गुटका बेच रहे हो क्या? और संजू कह रही है कामयाब प्रोग्राम माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हुस्न सवाल है आपकी और कुछ नहीं, यानी के समझ रही है ना। इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं जनाब एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक की जानिब, जो कि है तो फरंगी गाना यानी कि इंग्लिश है, बट टेम्पो जो है वो अभी जो हमने गाना आपको सुनाया है सेम टू सेम वैसा ही है। और ये भी मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट ट्रैक है, एड शीरन को शामिल कर रहे हैं, एलो फड़ो।

track, and I hope you like it. Welcome back, Hanky Sunyo, and everybody like the song. ये हुईनाबाद हनी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. और उसके साथ ही साथ ये गाना जिसको डेडिकेट हुआ, जिसकी जानिब से डेडिकेट हुआ, वो कहाँ गायब हो गई. वाह वाह वाह. लेकिन खैर मुझे भी बहुत पसंद था. एंड F14 टॉम कैट साहबजादा ने बिल्कुल सही बता दिया जना, मैंने 16 कह रहा था, आपने 14 कह दिया. उस वक्त 14 ही होगा यार. और इत्तेफाक मैं आपको बड़ी जबरदस्त सी बात बताता हूँ साहबजादा साहब, कि नो डाउट उस ये टॉप गन जो है बहुत बड़ी मूवी है, बट इत्तफाक ऐसा है, मैंने टॉम क्रूज मेरा बहुत फेवरेट एक्टर है और उसकी बेतहाशा मूवीज मैंने देखी हैं, बट हैरत अंगेज तौर पर मैंने टॉप गन नहीं देखी, क्योंकि उसकी मैवरिक जब आई थी और उसने भी बिलियंस जो है वो कमाए थे, तो मेरे जहन में ये था कि मैं टॉप गन जो है वो देखूंगा, देन आफ्टर दैट मैं मैवरिक देखूंगा. बट उसकी स्टोरी वगैरह सारा पता है और उसका गाना जो था, ओए होए होए होए, आज वो भी हो जाए तो क्या बात है, वक्त मिलेगा तो बात है. हुमैरा गजनफर मेरी प्यारी सी बहन आ गई है, शर्ट तो बड़ी अच्छी पहनी है नदीम भाई, पुराने दिन याद आ गए. हकीकत में बता रहा हूँ ये मेरी बहन. क्योंकि वैसे तो मैं सबको बहन कहता रहता हूँ, लेकिन ये हकीकत में मेरी बहन है हुमैरा गजनफर, और मुंतजर है. रोहमन किस चीज की मुंतजर है जरा बताइएगा. अच्छा ये जो चीज बनी हुई है इसकी. इस तरह तो होता है, इस तरह के काम. एनीवे जनाब, बढ़ते हैं सवाल की जानिब. और आज मैंने आपसे सवाल किया कि दुनिया में जो बर्रे आजम हैं, उन बर्रे आजमों में सबसे बड़ा बर्रे आजम और सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है. और इसके साथ साथ मैंने ये भी पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन यानी कि समंदर कौन सा है. तो दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम सबको पता है जनाब, वो बर्रे आजम है, बर्रे आजम एशिया. सलाम कहिएगा हुमैरा बहना को. हुमैरा सुन रही है, हुमैरा जवाब दो जल्दी से मेरी प्यारी सी बहन. और दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम जो

0: दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बर्रे आजम है, दैट्स ग्रेट। जमीन आपने कम से कम, ये हमें ये जो चीज है ना ये हमें इनकरेज करती है, हमें खुशी होती है कि जब हम किसी की डेडिकेशन या किसी का ट्रैक चला लेते हैं और पता चले कि वो सुन ही नहीं रहा, तो यकीन माने बड़ा गुस्सा आता है,
1: इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकते,
0: लेकिन जब वो सुन रहा हो तो फिर हमें खुशी होती है बहुत। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो जनाब दुनिया का बड़ा बर्रे आजम है कौन सा? एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ साथ हुमैरा सुन रही है, दैट्स ग्रेट। उसके साथ साथ मैंने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, गुफरान भाई जरा तवज्जो चाहिए। तो मैंने काशिफ भाई को बोला था ना कि इसका उर्दू में अगर नाम लें तो उसकी खासियत आप में पाई जाती है, तो वो है बहरुल काहिल। काहिल का मतलब पता है ना आपको, यानी कि समझ रहे हैं ना आप भाई, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हमारे अमीन साहब ने चार्ली को ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा था, मुझको भी डेडिकेट करने के लिए कहा था, और किन किन के नाम लिए थे? चार्ली जल्दी से बताओ, तुम्हारे लिए गाना चलाए अहमद जहांजेब का, एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है, आज की रात मत जा। आप सबको कहूंगा आज की रात मत जा, एलो फड़ो।

वेलकम बैक सुनियो, आज की रात न जा। अच्छा जनाब, बेतहाशा मैसेजेस आपके आ रहे हैं और हमने अभी अमीन भाई का ट्रैक चला दिया और उसके बारे में उन्होंने कोई नहीं कहा कि थैंक यू नदीम भाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन खैर जी, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में वक्त की कमी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो लिहाजा फौरन से पेशतर एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक और डेडिकेशन की जानिब जाएंगे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त एक्टर डायरेक्टर हनीफ खान भाई जो हैं वो इस वक्त सुन रहे हैं विद हिज वाइफ, हमारी प्यारी सी भाभी मारिया हनीफ खान, उनको वो एक ट्रैक डेडिकेट करना चाह रहे हैं। तो मारिया भाभी, आपके लिए आपके खूबसूरत से हस्बैंड की जानिब से एक प्यारा सा ट्रैक, एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक जनाब। वक्त बड़ा महदूद सा रह गया, अब क्या करें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और भाई स्पेशल थैंक्स मैं कहूंगा हमारे हनी भाई को एंड हमारी प्यारी सी भाभी मारिया को कि उन्होंने सुना आज शो। शो बिजनेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना वो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई शो सुन सकें, उनके पास टाइम कम होता है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई मैंने इनका स्पेशल थैंक्स कहा है एंड उसके साथ ही साथ आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे सलीम मेमन भाई का भी मैसेज पढ़ेंगे, कह रहे गुफरान भाई परसों में मनोरा जा रहा हूँ, इनामो लक से मुलाकात करूंगा, उसके बाद फिश खाऊंगा। फिश समझता है, फिश हाँ, शुक्र कर रहा हूँ शुक्र कर रहा हूँ, आपको पता है बोतल से शिकार करूंगा। शिकार समझता है, शिकार
1: बोतल तो सुबह मॉर्निंग में आएगा ना,
0: शिकार समझता है ना, शिकार की बात कर रहा हूँ। खैर जी सलीम अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं और थोड़ी सी तफरी करता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त जो है वो हाथ से फुर्र करके उड़ चुका है और अब मैं चाहूंगा आपसे इजाजत साइन आउट करने दी।
1: अरे ये बोल रहे बोतल लेके जाऊंगा, बोतल को तो मॉर्निंग में आना है,
0: बोतल से शिकार करेगा भाई, शिकार बोतल से शिकार, मछली कैसे आएगी,
1: बोतल की तो सुबह मॉर्निंग है
0: अच्छा जनाब एनीवे साइन आउट करना चाहूंगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्पेशल थैंक्स फॉर एवरीवन इन फेसबुक। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात अब जो होगी वो होगी जनाब संडे वाले दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। और लास्ट में एक बहुत जबरदस्त ट्रैक जो है हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन जोसफ जई साहब ने कहा था कि सज्जाद अली का कोई ट्रैक चला दीजिएगा, तो ये ट्रैक जो है जनाब उनकी जानिब से सबको डेडिकेट करेंगे एंड जितनी भी मेमन कजन्स हैं मेरी प्यारी प्यारी जी बहने सलीम मेमन की जो सिस्टर्स हैं उनको भी डेडिकेट करूंगा, सायरा मेमन को भी डेडिकेट करूंगा। और उसके साथ साथ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी प्यारी सी बहन अरूसा मेमन के लिए, अनम मेमन के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.